सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: प्रभु के सिमरन कमल बगासन,
1: प्रभु के सिमरन अनद चिनकार,
0: सुप्रा सिमरन का अंत न पार,
1: सिमरे से जन जिन को प्रमेया,
0: नानक तिन जन सरनी पया,
1: और सिमरन कर भक्त प्रगटाए।

0: अनेक साध प्रभु बनयाई
1: साथ के संग न कबू थावे
0: साथ के संग सदा सुख पावे
1: साथ संग बात गो चला है
0: साधु के संग जल सह
1: साथ के संग बसे थान ऊंचा
0: साधु के संग मैल पहुंचे
1: साथ के

0: संगम रत गुण गाय
1: साके संग सर्वतान गम
0: नानक साके संग सफल जनम
1: साके संग नहीं कचकाल
0: दासन भेट होत निहाल
1: साके संग कलू कतर
0: साके संग नरक पर।

0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: जतन कर आत्म निंद्रवे
0: आदर वेको कैसे गवे
1: वापस को जो फला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर की रेंजा का मन होए
0: कौन नानक ताकि

0: न पंच प्राणी
1: अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी
0: निरार निर्वैर सुखदाई
1: बाकी कीमत किने न पाई
0: अनंत भक्त बंधन नित करे
1: जनक हमें हृदय सिमरे
0: सब बलिहारी सतगुरु अपने
1: नानक जिस पर साध ऐसा प्रभु जपने
0: इहो अरस पावे जन को
1: अमृत।

0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपे शांत प्रसाद चक्र चहनर बन जात अरपात नैन जे
1: रूप रंग अर लेख पेख को कह न सकत के
0: अचल मूर तन पौ पर कासिम तोज कही जे
1: ओट इंद्र कराण साय साहान गणी जे
0: तर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रैन कहत
1: सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनस मत
0: पुचांग पर्याद शांत नमस्तवंग अकाले।

अर्शों कुर्सों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो जिस पास

संत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरी जै, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जीव

पुलिस ने खिचते नाल पलासा सिख मुंडिया दे नौ पुलिस ने खिचते नाल पलासा वो पुछे खालड़ा कितों आईया।

है सुपन चरित्र चित्र। कहते सुपने बिच आया चरित्र चित्र, बानक बने बचित्र बानक बनतर। आह बड़ी बचित्र बानक बनतर सी गुरु हरगोबिंद साहब दी। पावन पवित्र मित्र मेरे पवित्र पावन मित्र आज बोरे आए हैं। आज आए सी मेरे सुपने च, आज आए सी बड़े सालों बाद। आज बोरे आए हैं परम दयाल लाल लोचन विशाल। बड़े दयालु मोटियां मोटियां अखां गुरु हरगोबिंद साहब दियां। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मध मधर पिया। मुख तो बड़िया मिठिया मिठिया गल्ला एदा जापदा सी भी कन्ना च अमृत पै रहा। चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई। बबिया बोल पे अमृत वेले कहदे ओदी आवाज सुन के मेरी अखां खुल गईयां। सुपने वेखदे दियां छेवे पातशाह दे दर्शन करदे दियां सुपने च अखां खुल गईयां बबिया दी आवाज सुन के।

की। सब से खण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने हो, जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा। ख्वार होए सब के बचे सर निजो।

जिस आप बुझाए सो बुझ सी, निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझ सी, निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।